सुख कंठ कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्रता।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए तेरे अंगद गुर ते अमरदास राम दासी हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नव सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस जिथे सब दुख जाए देख बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपया वंड के छग्या देख चलाई तेंग वाही देख के अमृठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद

शिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरपो कहा सोहेला हों वारी जित सोहेला सदा सुख होय रहाओ नित नित जियड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाना किमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत सहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल घर घर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरी है नानक से दह आवन।

सहस मुहूर्त नन एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही।

मंडल खंडा है। पौरव लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजुली पुनवडा है।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदि सिमरव सिमर सिमर सुख पाव काल क्लेश तन माह मिटाव सिमरव जास विषम पर एक नाम जपते अगमते अनेक वेद प्राण सिमरत सदाख्यर किन्ने राम नाम एक आखियर किन काय जिह जी बसावे ताँ की महिमा गणि न आवे कांखी एक कै दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनी सोखे अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरे प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिगल न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै।

श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह विंस जाय हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद शतीह अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरह तिस रसना जे प्रसाद

कर जावह। जिह प्रसाद अरो कंचन देही लिव लाभ हो तिस राम स्नेही। जिह प्रसाद रावला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत।

होगी। कई कोड़ पंखी सिर पे उपाय, कई कोड़ पाथर वृक्ष ने बजाय, कई कोड़ पवन पानी बैस अंतर, कई कोड़ देश भू मंडल, कई कोड़ ससियर सूर नक्षत्र, कई कोड़ देव दान विंदर सिर छत्र,

श्लोक तरह सियान सुर जन हो सिमर हो हर हर राय एक आस हर मन रख हो नानक दू परम पव जाय अस्पदी।

सहज सुपाए होवे सो होए करने हार पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना देहते बजे तहमाए समाये हुए सुख निदान उनु बनाए आप को आप दीनो मान नान प्रभ जाने को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जान हार जा कै सिमरनी उदरी है

कह रसे जिसका साधन कृपा तारी साध संग जब नाम रारी थित पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जा श्रवण निर्गुण आव सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही।

की सेव आल दयाल विकास रहते राम नाम संरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभी खेव मारी प्रभु की उस्तद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मनीष

सच सोचाए सोच ना हो भई जे सोची लखवार चुप चुप ना हो भई जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाण पाला खोहे ता इक ना चले नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ा तुट्टै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है।

अहंकार, असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तपताव, असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंग योग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंग सती, असंग दातार, असंख मोह, असंख सूरमु भख सार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कमन का विचार वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलबड़ त्याग कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश बाल पाख खाहे, असंख नंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लोव, असंख है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुन गाह, अखरी लिखण बोलण बहाण, अखरा सिर संजोग बखाण, जिन ए

रूप। तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप, ताखियां गल्ला कथियां ना जाहे, जे को कह पिछा पछुताए। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहे आ भरपूर, तिथे सीतो सीता महमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ना वह मरहे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे, तिथे भगत वसे के लोह करहे आनंद, सच्चा मन सोहे, सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहार, तिथे खंड मंडल ब्रह्मांड, जे को कथे ता अंत ना अंत, तिथे लो लो आकार, जे बिजो हुकम तिवै तिवकार,

गुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया बाधाइया राग रतन प्रवार परियां शब्द गावन आईया शब्द होता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह रानक आनंद हो आ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नार रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिब क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिसदे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिन कह मन वसया बाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दिया ए वड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो सब तरो ब्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सभागे घर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दास कीते काल कंटक मारिया तुरकर्म पाया तुत जन गाव से नाम हर के लागे कहे नानक तय सुख होवा तित कर अनद बाजे साची लवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लवै बाजो क्या करे बेचारिया तबा समृत कोय

0: विचार हो किते राम नवान केती अकन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मग देगड़ मुन पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कठे बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पता लखटा क्या के मुंदरे लखटा क्या के हार जितन पाई नानका से तन हो गए चार
1: ज्ञान नाल गली टूटी है कथना करना सार कर्म मिले था पाई है और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नदक रहे जे अपनी
0: धानदरी सतगुरु पाया एह जियो बहुत जन्म ब्रह्मिया था सत कुछ अवसर सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सब आया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया।

गड्डी लद्दी ऐ पड़ पड़ पड़िए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई ऐ पड़ पड़ गड़िए खात पड़िए जीते बरस बरस पड़िए जीते।

0: निकलते आया
1: इन्ना जनता के बस किस ना ही
0: की जग तो पाया एक नानु तू मेल है इका पहुंचत खोआया गुर कृपा ते जानिया जित है तुद आ बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच

खत्री शब्द सूर शत्रु खत्री शब्द सूर शत्रु सूद शब्द प्राकृत है सर्प शब्द एक शब्द जेको जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्प देव।

सब को आखे अपना जिसना ही सोचन कड़ी है कीता आपो अपना आप ही लेका संडी है जा रहना ना या जगदा का इदगार वहंडी है मंदा किसी नाखी है पर अखर ए हो बुझी है मूर्ख ना न दूजी है मूर्ख ना।

वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौने दयावें ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ जी दार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जना नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता। तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीख दिते बंद बंद कटवाए। खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी सिद्ध के सां सवासां संग निभाया। तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखा दा मान नहीं वा मत उची मत पद दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पह दे सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहब। समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार। सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो। हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेओटिया दी ओढ़ ने आसरिया दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ओ। आप जी दे हजूर उदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मन हो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। अमृत वेले तो आप दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहब जी दे जाप पांच बाणियां दे नेत्रे मासा जी दी वार दे संपूर्ण कीर्तन होए। उपरंत सच्चे पातशाह जी आप जी वालों बख्शिश मुख वाग दी कथा विचार ते भगत कबीर सिंह वाहिगुरु जी भगत कबीर जी उन्हां दे जन्म दिहाड़े दी सच्चे पातशाह खुशी विच पावन विचारां होईआं ते संत बाबा गुरबंजन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्हां दे सचखंड गमन दिवस दे संबंध विच सच्चे पातशाह जी उन्हां दे जीवन कौतका दी कथा विचार होई। सच्चे पातशाह जी ओ कृपा करनी पातशाह जी छे पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप होया है। समुचिया सेवावां निभाउंदियां होया भुल चुक दी खिमा बख्शना। पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव आईआं संगतां दे हिरदे ते वसाउणा। सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां। दरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी। परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई। चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी। आप जीआं दे भाणे विच रैन सुखां नाल बतीत होई आया दिन आप दे भाणे विच बाणी पढ़दिआं सिमरन करदिआं बतीत होवे। सच्चे पातशाह जी अरदास बेनती है संगतां वल्लों। बीबी जसलीन कौर दी सेहत जाबी वास्ते अरदास बेनती। चढ़दियां कला बख्शनियां भाई जगतार सिंह उन्हां दी सेहत जाबी वास्ते अरदास बेनती है संगतां वल्लों। चढ़दियां कला बख्शनियां इस वेले बख्शियां खजानियां विचों कड़ाह प्रसाद दी देग सज के हाजिर है।
करी पाक साल सोज पवित्रा हूं लाभ भोग हराय आप जी दा सीत प्रसाद जो शके नाम वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जना मिलिया हमदा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या पही अकाल की तब चलायो सब सिखण को हुक्म है

सत पालो हम बारिक तुमरे तारे। सजन सच्चा पातशाह सिरसाह दे साहू जिस पास बैठिया सोही है सबना दा बे साहू।

जो जन पार ब्रह्मे अपने कीने तिनका बहर कछ न बिचारे नाम रतन जन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजहरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दशाह जिस पास बैठिया सोही है

गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीना। कहो नानक हर भज मना जिह बिद जल को मीना। बिखियन स्यो काहे रचियो निमक न होहे उदास। कहो नानक भज हर मना पर न जम की फास।

इन मैं कछ संगी नहीं नानक साची जान पतत उदाहरण पै हर न हर अनाथ के नाथ।

जे सिमरत गत पाई ते भज रे मीत कहो नानक सुन रे मना औद घटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जानो चतर सजान जह ते उपजियो नानका लीन ताहे मैं मान कट कट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौन दी उतर पार सुख दुख

कहो नानक हर भज मना अंत सहाय होए, जन्म जन्म भर मत फिरयो मिटियो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपय पावे बास, जतन बहुत मैं कर रहयो मिटियो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लो भगवान, बाल जवानी अर

प्रीत जय कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जय प्राणी कै नाहे मन जय से

नानक सब किस तुमरा हाथ में तुम ही हो तसहाय। संग सखा सब तज गए को नन बिहो साथ, कहो नानक ए बिपत मैं एक मैटिक एक रघुनाथ। संख

राग माला राग एक संग पंच बरंगना संग अलाप है आठो नंदना प्रथम राग भैरव करही पंच राग ने संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन्य सलेखी की पई बारी ए भैरो की पंचो नारी पंच महारख दसाख सुनाव है बंगालम मद माधव गाव है बंगालम मद माधव गाव है लाल तिबला वलगा वही अपनी अपनी भांत अट पुत्र।

अनादि अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी पौ लख होवै लख होवे लख वीस। लख लख गेड़ा की एक नाम जगदीस। हो त्राहे पद पवड़ियां चढ़िए होए अकीस। सुन गलाया कासकी कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर चुपे नह जोर, जोर न मंगण दे न जोर। जोर ना जीवन मरन नह जोर, जोर ना राज माल मनसोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार। जिस हाथ जोर कर वेख सोए, नानक तुम नीच न कोय। राती रुती तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिसवे धरती थाप रखी धर्मसाल। तिसविच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार। तिथे सुन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान। कच बकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए। धर्म खंड काय हो धर्म, ज्ञान खंड काय आखो कर्म। केते पौन पाणी वै संतर, केते कान महेश। केते बर मैं घाट घड़ी है रूप रंग के वेस। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देस। केते चन सूर केते, केते मंडल देस। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेस। केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पान रिंद। केतिया सुरती सेव केते, नानक अंत नांत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड़े आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप। ता किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। कर्म

के बोलन बोली है जित संतरे प्यार अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानके वह जानिए सब आपे सचे आर था प्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनी है मन रखी है भाव दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जेत सुभावा विन भाणे के नाए करी जेती सिरठे उपाई वेखा विन करमा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा उर्द सुनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा ना उर खाए कै जस कीर्त जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे ते हा कोई न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुने सिद्ध पीर सुरन

पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान तिथ वार न जोगी जाने रुत माहो न कोई जा करता सिरटी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सुलाही क्यों वरनी किव जाना नानके आखण सब को आख एक दू एक सियाण वड्डा साहब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जे को आपू जाने अगे ज्ञाना सो है पाताला पाताल लाखे आगासा आगा सोड़ कोड़क पाल थके वेद कहनिक वात सह से उठारे कनक देबा सलू एक धात लेखा होए तां लिखिए लिखे होए बनास नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सलाही सलाहे ती सुरत ना पाई आ नदियां ते वाहा पवे समुंद न जानी है समुंद सा सुल्तान ग्रह से ती माल धन कीड़ी तुल ना हो बनी जे तिस मनो ना विसरै अंत न सिवती कह नंत अंत न करने दे नंत अंत न वेखण सुन नंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता या कार अंत न जापे पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा सहब उच्चा था उचे उपर उच्चा ना हो ए वड़ी उच्चा होवे कोए ते सूचे को जाने सोए जेवड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए किते मंगे जोधे अपार कित्या गणत नहीं विचार किते खब तुटे विकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर खाही खाहे कित्या दू भू सद मारे पेदा तेरी दातार बांध कलासी भाणे होए राख ना सके कोए जे को खाए के आखण पाए ओ जाने जेतिया मोखाए आपे जाने आपे दे आखे से पे के ही के जिसनू बख्शे सिपत सलाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार मुल आवे अमुल लै जाहे अमुल भय मुला सुमाहे मुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल मुल प्रवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फरमान।